कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे। जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्त सविता पुकार रही है आपको कि मुझे आजमा लो सवेरे सवेरे। दोस्तों सवेरे सवेरे तो नहीं है, थोड़ी सी सुबह चढ़ चुकी है, सूरज चढ़ चुका है और सुबह के 10:03 हो चुके हैं और मैं आपकी दोस्त सविता स्टूडियो में हाजिर हो चुकी हूँ आपकी खैरियत पूछने।

जी हाँ दोस्तों, खैरियत से है ना आप सभी? बिल्कुल आपकी खैरियत हम हमेशा चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप हंसी खुशी मुस्कुराते रहें और हर तीज त्यौहार उत्सव को का जश्न मस्ती के साथ मनाते रहें। और महीने का ये पहला वीक है, जी हाँ अक्टूबर महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाली है। और हमें पता है कि आपकी शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है, करीब करीब कुछ लोगों की शॉपिंग तो शायद ख़त्म भी होने को होगी, क्योंकि पूजा, जी हाँ बिल्कुल पूजा, दुर्गा पूजा एकदम करीब जो आ चुकी है। और जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो भी ख़रीद लीजिए, एक मुलाकात दोस्तों के साथ कर लीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ कर लीजिए और जाइए शॉपिंग पर, एंजॉय करिए।

0: बिल्कुल दोस्तों, एक मुलाकात ज़रूरी है अपने आप से करने के लिए। बिल्कुल अपने आप से यदि आप खुद मुलाकात करते हैं तो कई बार ज़िंदगी का फलसफा हमको समझ आ जाता है कि, और उसको समझ भी ना पाए तो समझने में आसानी ज़रूर हो जाती है। दोस्तों, खुद के साथ समय गुजारना बहुत ज़रूरी है, और चलिए खुद के साथ समय गुजारने के साथ साथ हम आपके साथ भी समय बिताने आ गए हैं। और जी हाँ, हर दिन हम आपके साथ मिलने आते हैं क्योंकि हम इसको ज़रूरी समझते हैं नॉन स्टॉप गपशप में। और आइए आज के दिन के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं।
1: आज के दिन
0: दोस्तों, गौरवपूर्ण गाथाओं के जो खजाने हैं ना, वो शायद संसार के हर देश के इतिहास में छुपे हैं। उन्हीं कहानियों से गुजरती नस्लें लिख देती हैं एक और इतिहास, और बन जाते हैं वो ऐतिहासिक तथ्य। तो कुछ ऐसे ही तथ्यों को साझा करने के लिए हम आपके साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। और 6 अक्टूबर को वो कौन सी घटनाएं थीं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, उनमें है 105 ईसा पूर्व इसी दिन रोमन सेना को अरासियों के युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा, जो रोमन इतिहास की सबसे भीषण हारों में थी। दोस्तों, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा लुई सोलवे को पेरिस की कुछ महिलाओं के विरोध के बाद वर्साय से पेरिस लौटने के लिए विवश होना पड़ा था। यह घटना उस समय राजशाही पर जनता की शक्ति का प्रतीक थी। हाल के इतिहास में मिस्र में 6 अक्टूबर को 1973 में इजराइल के विरुद्ध योम किप्पुर युद्ध में विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी थी ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने की आपके साथ साझा। और फिलहाल आपके साथ एक गीत हम सुनवाएंगे, उसके बाद हम बताने वाले हैं कि आज हम आपसे क्या बात करने वाले हैं।

जी हाँ, कोई तो है आपके दिल की धड़कन में आंखों से उतर कर। दोस्तों, अभी आपको इंतज़ार होगा कि हम किस बात पर बात करने वाले हैं। नॉन स्टॉप गपशप तो होगी, तो वो विषय क्या है? तो दोस्तों, वो वक्त आ गया है आपके इंतज़ार के पल। अब हम और ज़्यादा नहीं करवाएंगे आपसे इंतज़ार। और आज के दिन कुछ खास व्यक्तियों का जन्म हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आज का विषय क्या है। दोस्तों, विषय बड़ा ही इजी है और बड़ा ही नॉस्टैल्जिक है। जी हाँ, हम अक्सर जिंदगी में ऐसे कई दिन हमारी ज़िंदगी में गुजर जाते हैं जिनको कि हम याद करते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई एक वो दिन लौटाने के लिए यदि खुदा या कोई ऐसा मैजिक बैंड आ जाए जो कहे कि मैं आपका वो दिन वापस ले आऊँगा, तो वो कौन सा दिन आप चाहते हैं वापस लाना? जी हाँ, ज़िंदगी में कई बार ऐसे दिन, कोई ऐसे पल हमारे गुजर जाते हैं जिन्हें हम बार बार याद करते हैं और उन्हें वापस लाना चाहते हैं। तो बात बस इतनी सी है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर। और आगे कार्यक्रम में मैं बढ़ती हूँ। आज के दिन खास जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ उनमें 6 अक्टूबर को भारत के महान वैज्ञानिक और खगोल विज्ञानी का जन्मदिन है। उनका जन्म 1893 में बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1920 के दशक के भारत के कई वैज्ञानिकों ने अपने काम से दुनिया में खास जगह छोड़ी, खास छाप छोड़ी, और वो थे मेघनाथ शाह। जी हाँ, 1920 के दशक में भारत के कई वैज्ञानिकों ने अपने काम से दुनिया में खास छाप छोड़ी थी, तो वो उसी में से एक थे। एस्ट्रोफिजिक्स में से वो अपने शाह समीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय शक पंचांग में भी उन्होंने संशोधन किया। इसे देश में 22 मार्च 1957 से लागू किया गया। दोस्तों, सहा एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें आज़ादी की लड़ाई में कूदने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके बारे में हम और बात करें तो उन्होंने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अथक प्रयासों के कारण ही परमाणु भौतिकी संस्थान की स्थापना हुई। डॉक्टर मेघनाथ शाह ने तारों के तापमान और स्पेक्ट्रम के बीच घनिष्ठ संबंध के भौतिक कारणों की खोज की थी। तो हमने बात की मेघना शाह की। और इसके अलावा दोस्तों, आज हुआ हमारे बॉलीवुड के खास नेता से अभिनेता बने जाने माने स्टार विनोद खन्ना का जन्म। जी हाँ, 6 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। विनोद खन्ना ने मेरे अपने, कुर्बानी, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी शानदार फिल्में की। दोस्तों, विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की 1968 की फिल्म

मन का मीत से फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में विनोद ने एक विलेन का किरदार निभाया था। उस फिल्म में सुनील दत्त के भाई सोम दत्त मुख्य भूमिका में थे। यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके अलावा करियर के शुरुआत में विनोद खन्ना ने ज़्यादातर सपोर्टिंग या विलेन वाले रोल किए। इन फिल्मों में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, फिरोज खन्ना की फिल्म कुर्बानी में भी उन्होंने साथ में काम किया और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। विनोद खन्ना ने 137 फिल्मों में काम किया, जिसमें वह 101 में लीड रोल में नज़र आए और 36 फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया। विनोद खन्ना की बात हुई है तो आइए उन्हीं की फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपना वो दिन वापस करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। आपके लिए वो दिन यादगार है। जी हाँ, फ़ोन कॉल पर आप जुड़ सकते हैं और आज नॉन स्टॉप गपशप पर बात होगी। कोई यदि आपके सामने आए और कहे कि एक दिन मैं आपका वापस कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप वो कौन सा दिन है जिसे वापस करना चाहेंगे? बस अपनी इन्हीं बातों के साथ जुड़ना है मेरे साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, हमने वादा किया था कि हमारे दोस्त हमसे जुड़ेंगे तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त। तो देखें वो अपना कौन सा दिन वापस लेकर आना चाहते हैं, ज़रा जान लें। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
1: हेलो, हाँ,
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए आपका नाम क्या है?
1: मैं मनीरुद्दीन बोल रहा हूँ, दक्षिण सांसद हावड़ा से।
0: मनीरुद्दीन जी, थोड़ा सा अपना रेडियो से दूर कर लीजिए, मेरी आवाज गूंज रही है।
1: अब ठीक है?
0: हाँ, अभी थोड़ी सी और दूर करिए।
1: ठीक है,
0: हाँ, अब बताइए कौन सा वो दिन है जो आप वापस लाइन लेकर आना चाहते हैं?
1: सबसे पहले आपका याद करना चाहता हूँ इतना अच्छा मौका देने के लिए, हमारे बोलने के लिए, और इतना बेहतरीन गाना, खास करके वादा कर ले साजना, बहुत अच्छा गाना है, तो इसलिए सुनाने के लिए।
0: जी शुक्रिया।
1: टॉपिक के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब मैं नौकरी मिला उसके पास फर्स्ट सैलरी मेरा माँ के हाथ में दिया, और उसी के लिए साड़ी खरीद लिया, और उसी साड़ी और वो जो मानी सैलरी है वो मेरा माँ का हाथ में उठा दिया। उसी दिन मेरा माँ का जो खुशियाँ देखा है वो खुशियाँ और पृथ्वी कौन का खुशियाँ से तुलना नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर करना नहीं चाहिए। कोई भी खुशी आज का, क्योंकि वो खुशियाँ हमारे दिल में है, आज हमारा माँ नहीं है, मेरा माँ नहीं है, लेकिन सभी खुशियाँ आज भी बरकरार रहे मेरे दिल में।
0: जी जी जी,
1: थैंक यू मैम।
0: जी थैंक यू मनोज दिन जी। तो मनोज

0: सचिन जी ने हमारे साथ अपनी खुशियाँ, अपना जो सुनहरा पल था वो हमारे साथ दोस्तों शेयर किया। और आप भी यदि कोई अपनी ऐसी बात हमें बताना चाहते हैं कि वो कौन सा दिन है जो आप वापस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हे भगवान वो दिन फिर से वापस लौट के आ जाए। देखिए कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी खुशखबरी हमको मिलती है जो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक शख्स हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी को शेप करता है, पूरी जो हम एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं लेकिन उसको एक प्रतिमा बनाता है वो इंसान। और वो इंसान कई बार हमसे किसी कारण से दूर हो जाता है, तो कौन है वो शख्स जिसे आप वापस लेकर आना चाहते हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ कौन बोल रहे हैं?
1: मैं शोभी शोका बोल रहा हूँ, दीदी कस्बा से।
0: शोभी जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कैसे हैं?
1: मैं अच्छा हूँ, आप?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और इंतजार कर रही हूँ बस आप लोगों का। बताइए।
1: थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से जो टॉपिक दिया है
0: जी।
1: देखिए मैं जो कोई आदमी मेरे पास आए तो बोल ले तो एक दिन के लिए आपने कोई दिन चाहिए तो बोलिए, मैं बोलूँगा एक दिन के लिए जो दिन चाहिए वो है माँ बाबा के साथ मेरे साथ एक दिन काटाना। जब छोटे वाला मैं बचपन में जो कटाया था, मेरे माँ बाबा दोनों ही नहीं है, मेरा मम्मी, हाँ मेरा मम्मी को एक साल पहले गुजर गया था और पापा को मैंने एकदम बचपन में मैं हरा मतलब चल गया। देखिए हाँ छोटे वाला में जब होता था जो पापा मम्मी एक साथ जो डिनर की जो होता रात में, पापा जब काम से आता था तो एक साथ हम लोग डिनर करते थे, पुस्तक में मुझको चाहिए, एक साथ हम लोग डिनर करते थे, कोई बड़ी बड़ी कोई खाना पीना नहीं, छोटा सा कोई खाना दाल भात बोलिए, दाल चावल बोलिए, रोटी बोलिए, जो भी हो, किंतु वो जो खुशी का जो बात है ना, हम लोग पापा बाहर में का हुआ वो शेयर करते थे, मामी घर में का हुआ वो शेयर करते, मैं स्कूल में का हुआ वो शेयर करते थे, हंसी ठट्टा जब होता था हम जब बैठते थे रात में, वो मुझको दिन मुझको चाहिए दीदी। वो जब भी कोई भी चाहे फरिश्ते आए तो बोलते हैं तो क्या चाहिए, मैं बोलूँगा एक दिन मुझको दे दो, एक दिन के लिए मुझको दे दो, वो जो डिनर हम लोग करते हैं ना माँ बाबा के साथ, वो मुझको दीदी वही मैं
0: बिल्कुल छोटी जी जो परिवार के साथ बैठ करके जो हम खुशियाँ मनाते हैं ना उससे बड़ी कोई खुशी नहीं, ये हकीकत है
1: एकदम दीदी। मतलब परिवार के साथ हम लोग जब बिताते हैं ना सबसे बड़ा बात कोई नहीं है, हम लोग जब भी कोई दूर में कोई जाते हैं तो बारात में जब हम लोग काम करके जब भी आते हैं तो घर में जब आते हैं तो हल्का सा मुस्कान रहते हैं किसके लिए, हाँ हम लोग परिवार के साथ हम लोग बिताएंगे घर में, मामी है पापा है वाइफ है जो भी है हम लोग तो उसके साथ हम लोग टाइम बिताएंगे दीदी।
0: बिल्कुल, तो शोभित ईश्वर करे आपका साथ कोई ऐसा एक आपकी जिंदगी में शख्स आए जो आपके मम्मी पापा की कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता लेकिन थोड़ा साथ दिया जा सकता है ना।
1: एकदम दीदी
0: बिल्कुल, तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: एकदम दीदी आपके शब्द जब भी सुनता हो तो मुस्कुराने तो आप यहाँ बोलते
0: जी, मुस्कुराहटों के साथ ही तो जिंदगी कटनी चाहिए ना।
1: एकदम दीदी, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छा सा गाना सुनाते हैं और टॉपिक भी बहुत हार्ट टचिंग टॉपिक ले आते हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी
0: जी,
1: आपको मेनी मेनी थैंक्स।
0: थैंक यू। तो दोस्तों सच में हम जो कहते हैं ना कि लाइफ में आपको कोई कितना भी बड़ा इनाम दे दे, कोई बड़ी से बड़ी धन संपत्ति दे दे, लेकिन कोई एक पल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वक्त होता है कि जिसका कोई मोल ही नहीं है, वो अनमोल है, उसकी कोई हम कीमत नहीं अदा कर सकते, और वो तो हमें तभी मिल सकती है जब हम हमको कोई फरिश्ता करके दे जाए। एक और दोस्त जुड़ रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद हम गीत सुनवाएंगे एक बड़ा ही प्यारा सा। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
2: अरे गाना सुन रहे हम आप।
0: जी गाना तो हम सुनवा ही रहे हैं आपको बहुत सारे।
2: हाँ हाँ,
0: अच्छे अच्छे गाने सुनवाएंगे आपको।
2: सुनवा के एक तो हमको सुनवाइए ना, हम अर्पण छवि का जो लता मंगेशकर का अर्पण छवि पर

0: जाके फंस जाओगे ना।
1: जी जरूर हम कोशिश करेंगे। ठीक है आपका नाम क्या बताइए?
0: अशोक रजक बोल रहे दीदी।
1: अशोक रजक जी, अशोक रजक जी आपका बहुत
0: नमस्कार।
1: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे अशोक रजक जी, और चलिए पहले गीत सुनवा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे ढेर सारी।

0: मगर लौटा दो मेरा वो बचपन, वो कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी। और देखें कि ये जो हमारे अगले साथी हैं वो किस चीज़ के लौटाने की बात कर रहे हैं, जरा झटपट कर लेते हैं बात। हेलो
1: जी नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सविता जी।
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका नाम बताइए।
1: मैं मोहम्मद नासिर गरियाघाटा से।
0: मोहम्मद नासिर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कैसे हैं सबसे पहले।
1: बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले करम है, बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी सविता जी।
0: बिल्कुल, मैं तो अच्छी हूँ और आप लोगों से जब बात करती हूँ तो और भी अच्छी हो जाती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक लेकर करके आई हैं आप
0: जी।
1: और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, टॉपिक से रिलेटेड आप गाने सुना रहे हैं
0: जी।
1: तो ये और भी खुशी हो रही है, और भी अच्छे लग रहा है प्रोग्राम सुनने में
0: जी।
1: जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने टॉपिक रखा है कि अगर आपको कोई एक ऐसा पल मिले जो लौट करके आप चाहेंगे कि मुझे वो दोबारा आ जाए मेरे पास, वो कौन सा पल होगा, वो कौन सी घड़ी होगी। तो यूं तो बहुत सारी यादें गुजरी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे पल हैं जो हमेशा याद आते हैं और सोचता हूँ कि शायद इस तरह का पल दोबारा लाइफ में आ जाए और शायद पॉसिबल भी नहीं लगता है। लेकिन उन तमाम यादों में, तमाम चीजों में एक ऐसा याद है जो लाख चाहने के बाद भी जो है तो दिल को वो चैन, वो सुकून, वो खुशियाँ, वो पल नहीं आ सकती। वो है माँ का आंचल, माँ का प्यार और माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना और माँ के हाथों से मुंह से सुनाया हुआ लोई और देश को सहला कर करके सोया सुलाया हुआ वो पल। तो वो मुझे सविता जी वो हमेशा यादें बन करके रह जाती हैं और वो दोबारा लौट करके नहीं आती है। जब मैं अपने बचपन में था और अपनी माँ के साथ, मेरी माँ डेट कर गई बहुत पहले, मेरा उम्र जो है तो 54 है, तो वो घड़ियां मैं हमेशा याद करता हूँ। और मैं खास कर करके उन लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जिनके साथ माँ है, जिनके पास माँ है, प्लीज आप माँ की बहुत बहुत बहुत बहुत कदर करें और उनसे जुड़ करके रहें और उनकी दुआएं लें, इसलिए कि वो एक ऐसी अनमोल रत्न है कि अगर एक बार आपके पास से खो गई तो जीवन में दोबारा कभी भी आपको नहीं मिल सकती, न उस तरीके का प्यार आपको मिल सकता।
0: सच बात है, अगर जिसके पास नहीं है वही इस दुख को जानता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सविता जी, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे प्रोग्राम, अच्छे अच्छे गाना सुना रही हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया। तो नासिर जी ने अपने मन की बात की और हम तो यही कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी ही शख्सियत आ जाए जो उनकी माँ की कमी को पूरा तो नहीं कर सकती लेकिन साथ उनके कुछ थोड़े से दर्द ज़रूर बांट ले, उनको सुकून दे, उनको संतोष दे। और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त है कि जो कमबख्त इतनी तेज़ी से दौड़ता है ना, लगता है कि इसके मैं पंख पकड़ करके अपने पास बिठा लूँ और ढेर सारी आपके साथ बस देर तक बातें करती रहूं और आपकी बातें, आपके मन की बातें मैं सुनती रहूं, क्योंकि मैं सचमुच में चाहती हूं कि आप लोगों के दिल की बात सुन पाऊं। लेकिन वक्त हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, 10:50

50 मिनट और 17 सेकंड हो चुके हैं और हमारे एक कॉलर ने हमसे फरमाइश की थी फिल्म अर्पण के एक गीत को सुनवाने की। हालांकि ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है, तो चलिए हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और सुनवा देते हैं उनका ये गीत फिल्म अर्पण से। और आपका आखिरी कॉल का मुझे इंतज़ार है। आप झटपट अपने मन की बात कह सकते हैं कि वो कौन सा दिन है, वो कौन सा पल है जो आप वापस करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, कुछ क्षण कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं परदेसी की तरह से, जो फिर लौट कर वापस नहीं आते। और कभी लौट कर वो चले आए तो फिर लगता है जैसे कि कोई फरिश्तों ने हमारी दुआ सुन ली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अंतिम कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं।

0: हेलो क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
1: हेलो सविता जी,
0: हाँ, आप सुन पा रहे
1: नमस्ते।
0: हैं?
1: हाँ
0: नमस्ते।
1: हाँ
0: हाँ,
1: सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं।
0: बताइए आपका नाम।
1: शुभजीत बोल रहा हूँ, बेलघोड़िया से।
0: शुभजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सबसे पहले आप हैं कैसे?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप लोगों से बात होती है तो और भी अच्छे हो जाते हैं हम लोग, बताइए।
1: और आपने एक ऐसे टॉपिक चेंज किया जो हम लोग मुझे एक्चुअली बहुत साल पहले पहुंचा दिया, क्योंकि
0: जी
1: मेमोरीज एक ऐसी चीज है जो हम उस समय तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो असर होता है जब वो समय चला जाता है, लेकिन वो मेमोरीज भी रह जाती है। तो मेरे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा एक वक्त आता है जो
0: जी
1: हम लोग सोचते हैं कि वही हम लोग उसको पकड़ के रखें जो कि बचपन की यादें, और बचपन में हम लोग जितने भी कुछ कर चुके हैं, जो भी जो उसका जो एहसास है, अभी बड़ा होके लगता है कि बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है जिंदगी में जब लगता है कि वक्त थम जाए, कि वहां से और ना पास हो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो वक्त हम लोग उस लोगों के साथ बिता चुके हैं जो अब भी हम लोग की जिंदगी में नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: वो पल भी मैं ले वापस ले आना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपका जिंदगी जुड़ा है, जब वो लोग नहीं है आपकी जिंदगी में, तब एहसास होता है कि वो लोग कितने हम लोग के जिंदगी में इम्पोर्टेंट है,
0: और हम कितने खाली हो गए।
1: हम लोग कितने खाली हो गए, क्योंकि
0: जी बिल्कुल,
1: लोनली लाइफ जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है।
0: सच बात है। तो आपने हमारे साथ अपना ये शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: और
0: शुभजीत
1: एक
0: जी।
1: चीज मैं बताना चाहता हूँ, सविता जी की तरह कुछ आर्टिस्ट हैं आकाशवाणी में जिन लोगों के साथ बातें करने में इतना सुकून महसूस होता है। मैं सचमुच बता रहा हूँ,
0: जी
1: आपके साथ जितने भी लोग छायलो करते हैं, सुबह के प्रोग्राम करते हैं, सब लोग इतने गहराई से और इतने फीलिंग के साथ लोगों से बात करते हैं, लिसनर से बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है मैम।
0: जी तो ये एक्चुअली हमको भी बड़ा सुकून मिलता है कि आपके साथ हम 1-to-1 जो पाते हैं,
1: जी,
0: और लगता है जैसे कि आप लोग जो वो बात कर रहे हैं ना, वो हमारी अपनी बात कर रहे हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि हम लोग फैमिली के साथ, मेंबर्स के साथ
0: बिल्कुल
1: बात करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: यही तो
0: तो
1: जिंदगी है मैम, और क्या है बता रहे।
0: बिल्कुल, तो शुक्रिया शुभजीत जी।
1: थैंक यू मैम,
0: और
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी तो दोस्तों, हमारे साथ शुभजीत जी जुड़े, और बिल्कुल घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि फिलहाल के लिए विदा ले ली जाए। और 9 तारीख को मैं वापस आ रही हूँ, मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट के फिर ना आ सकूँ। तो ऑफ कोर्स मैं 9 तारीख को वापस आने वाली हूँ। और 11:10 पर आज हम अपने प्रोग्राम में विनोद खन्ना का जन्मदिन बनाएंगे, तो अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाएंगे, उनकी ढेर सारी बातें करेंगे। तो जुड़ना ना भूलें 100.1 पर, यानी 101.1 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। और मैं थी 107 FM रेनबो पर आपके साथ आपकी दोस्त सविता। फिलहाल दीजिए इजाजत अंतिम गीत के साथ।

107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

0: नमस्कार दोस्तों, आज आपकी अपनी आरजी सुलक्षणा पर्वत लेकर आई है विशेष कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति। और आज मैं बातें साझा करूंगी आपसे पीएम ई ड्राइव योजना से संबंधित। श्रोताओं, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं परियोजना प्रस्तुति में। पीएम ई ड्राइव भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की एक सरकारी योजना है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया तिपहिया वाहन, ई बसों और ई ट्रक के उपयोग को प्रोत्साहित करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। ये योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और पर्यावरण के लिए स्वच्छ परिवहन को अपनाने पर केंद्रित है। योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, ईवी अपनाने में तेजी, यानी कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करके उनके उपयोग को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा, यानी कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और उनके घटकों का निर्माण करने वाले एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण क्षेत्र से जो होने वाली वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित करना। योजना के तहत क्या शामिल है? मांग प्रोत्साहन, यानी कि ई दो व्हीलर, ई थ्री व्हीलर, ई एम्बुलेंस और ई ट्रक की खरीद और अग्रिम सब्सिडी प्रदान करना, पूंजीगत परिस्थितियों के लिए अनुदान, ई बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करना, ई वाउचर का उपयोग, खरीदारों को एक आधार प्रमाणित ई वाउचर के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसे डीलर द्वारा जमा किया जाता है, नई श्रेणियों को प्रोत्साहन, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और अन्य उभरती हुई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों श्रेणियों को बढ़ावा देना योजना का जो है इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन है। और ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च तक जो है ये चलेगा, लेकिन इसका फायदा तो आपको आगे भी मिलते रहेगा। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। संक्षेप में, पीएम ई ड्राइव भारत को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों अपनाने में एक महत्वपूर्ण चरण में लाने और ई स्वच्छ टिकाऊ परिवहन भविष्य बनाने के लिए बनाई गई एक व्यापक पहल है।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर।
0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। ऐसा है कि स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:06 और आप सब बिल्कुल तैयार हैं अपने फेवरेट नून शो का जो इंतजार करते हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। और ऐसा है कि तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का और आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत जो है वो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है इस ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम में। तो देर न करते हुए वाई डोंट आई स्टार्ट, पहला गाना आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट फिल्म से कुणाल गाजावाला, नीरज श्रीधर, राजेश, अलीशा चिनॉय और मेघा की आवाज में। प्रीतम ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है कुमार ने, इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। तो चलिए देर न करते हुए सुनते हैं, यू आर माई लव।

इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना फ्रॉम द मूवी ऑल द बेस्ट. और कहते भी हैं जब शुरुआत करो तो ऑल द बेस्ट कहना चाहिए. और अगर आप ऑल द बेस्ट फिल्म से गाना सुनते हैं तब तो फिर क्या बल्ले बल्ले एकदम. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि तुषार कपूर और एकता कपूर को भला कौन नहीं जानता. और उनके पापा जंपिंग जैक यानी कि जितेंद्र को तो और भी मतलब गोल्डन एरा के एवरग्रीन हीरो माने जाते हैं. और ऐसा है कि जब तुषार और एकता बहुत छोटे थे ना तो अक्सर दोनों भाई बहनों में बहुत लड़ाई होती थी और तुषार बहुत पिटाई करता था एकता की. लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मतलब यूं ही बच्चे खेलते खेलते थोड़ा मारपीट कर भी लेते हैं तो मतलब तुषार ने जो है एक पंच मारा था एकता के नाक पर और संग संग जो है एकता ने कॉप को बुला लिया था फ़ोन करके. तो ऐसा भी होता है छोटे छोटे भाई बहनों में. और ख़ास करके अगर बात बॉलीवुड की हो तो उनकी खबरें सुनना जानना भला किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी कान जो है ना वो खुले रखते हैं हम बॉलीवुड न्यूज के लिए. चलिए इसी बात पे अगला गाना आपको सुनाती हूँ कबीर सिंह से, अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज में. कुमार ने इस गीत को कलमबद्ध किया है और तुलसी कुमार ने संगीतबद्ध किया है.

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का, यानी कि सुलक्षणा जो कहती है कि तीन का तड़का मतलब ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। ऐसा है दोस्तों कि अक्टूबर 2026 में दृश्यम द कंक्लूजन सहित कई बॉलीवुड फिल्में जो है सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ इस महीने के अंत तक आने वाली है। अक्टूबर 2026 की मतलब जो 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई थी उनके बारे में बता दूं, दृश्यम 3 थ्रिलर फिल्म, मुख्य कलाकार अजय देवगन, तब्बू, जयदीप अहलावत। इसके अलावा एक और फिल्म रिलीज हुई पूजा मेरी जान, रोमांस और थ्रिलर, इसमें जो लीड रोल में है हुमा और मृणाल ठाकुर। और ऐसा है कि इसी के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई है प्रेम कितनु, कॉमेडी और रोमांस फिल्म है और वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना इसमें लीड रोल में है। और आज है 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को जो फिल्में रिलीज होंगी उसके बारे में बता दूं, बख्शी हॉरर फिल्म, निर्देशक भार्गव सेखिया, डोंगरी भी एक फिल्म है जो एक्शन और ड्रामा फिल्म है, रिलीज होगी 9 अक्टूबर को, और रिपोर्टिंग लाइफ क्राइम और थ्रिलर फिल्म भी रिलीज होने वाली है 9 अक्टूबर को, इसमें जो है लीड रोल में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। बट बाय द टाइम आप डिसाइड करें कौन सी मूवी आपको देखनी है, मैं आपको सुनवाती हूं एश किंग की आवाज में दृश्यम से वो गाना जिसके बोल है कार्बन कॉपी। गुलजार ने इसे कलमबद्ध किया है, विशाल भारद्वाज ने इसे संगीत से सजाया है।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:25 और आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि 3:30 से आप सुनेंगे NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग, और इस बीच हम और आप मिलकर सुनेंगे लाइफ इन अ मेट्रो से सुहेल की आवाज में अगला गीत, जिसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है शाहिद कादरी, संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। और इस गीत को सुनते सुनते आपसे आज्ञा लेगी आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। फिर मुलाकात होगी आज ही 7:02 पर, शाम को लेकर आऊंगी म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओ आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
2: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
2: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
2: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ लेकिन श्रोताओं अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
2: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओ अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
2: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी। लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
2: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
2: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
2: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
0: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
2: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: और श्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
2: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
2: जी
0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
2: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
2: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
2: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
2: जी
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
2: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। और हमारा सवाल है,
2: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है।
2: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
2: तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

0: 8800-44-5559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो बेचारा मरा पड़ा है।

0: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
1: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
2: नहीं नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
3: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
1: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
3: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
0: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
3: भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
5: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
6: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
7: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
8: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
9: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
10: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
11: जो आज्ञा आचार्य।
10: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी।

0: पति कहोड और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता

अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोर कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़। ओह, पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
6: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ, परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
8: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
9: श्वेत केतु,
10: अष्टावक्र,
9: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
10: हाँ,
9: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
10: कब चलना है?
9: बस अभी तुरंत

0: 14 वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
1: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
2: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
3: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
4: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
5: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
2: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
4: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
2: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
0: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
4: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
2: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
4: अत्यंत सुंदर।
3: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
4: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
2: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
6: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो।
0: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
2: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
3: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
4: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
2: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
4: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
2: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

भरे नगमे। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। और आज छायालोक यानी मंगलवार के दिन आपके लिए रहता है छायालोक में सेगमेंट प्यार भरे नगमे। अब जाहिर सी बात है कि जितने भी नगमे हैं सभी बड़े प्यार से लिखे गए होंगे और हम बड़े प्यार से सुनते भी हैं। कुछ एकाध गाने ऐसे भी होते हैं कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एक बार क्या बार सुनना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जब ट्यून करते हैं दिल से दिल तक वाला चैनल और जुड़ जाते हैं 107 एफएम रेनबो से, म्यूजिकली योर्स से, जो रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। और फिलहाल आपको बता दूं कि मैं भी ढेर सारी बातें साझा करूंगी और बहुत सारे गाने भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन जरूरी है ना कि कोई एक विषय हो जाए, कोई एक लाइन बन जाए, कोई एक टॉपिक हो जाए तो मजा आ जाता है। ऐसा है कि बॉलीवुड में जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार सिस्टम, उसके वैल्यूज और आपसी रिश्तों के उतार चढ़ाव पर कई बेहतरीन फिल्में बनी हैं। इनमें से कुछ सबसे पॉपुलर और आइकॉनिक फिल्में जो हैं उसके बारे में मैं बातें करूंगी और उन फिल्मों से मैं आपको गाने भी सुनवाऊंगी। शुरुआत करूंगी उस फिल्म के साथ जो बनी थी इन द ईयर 1999, हम साथ साथ हैं। ठीक वैसे ही फिल्म का नाम तो हम साथ साथ हैं ही, लेकिन फिलहाल हम और आप भी साथ साथ हैं 107 पर।

इस गीत को आपने सुना हरिहरन, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन, उदित नारायण और सैफ अली खान की आवाज में, फिल्म हम साथ साथ हैं से। और जब बात कर रही हूं मैं हम साथ साथ हैं फिल्म की, तो बता दूं कि बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बनी थी जॉइंट फैमिली पर, बड़ी जॉइंट फैमिली पर, उन्हीं में से एक ये फिल्म भी है। और कहानी की बात करूं तो ये एक ऐसे आदर्श परिवार की कहानी है जहां तीन भाई मुनीश बैल, सलमान खान, सैफ अली खान और उनका परिवार एक साथ हंसते खेलते रहता है। लेकिन परिवार बड़ी हो, जॉइंट फैमिली हो, बड़ा हो और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्ट्रेस ना हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इस फिल्म में भी देखने को मिला था कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आपसी गलतफहमी और प्रॉपर्टी के बंटवारे की बातें एक हंसते खेलते जॉइंट फैमिली में तनाव, स्ट्रेस पैदा कर सकती है, लेकिन आखिर में प्यार और पारिवारिक संसार ही सबको जोड़कर रखता है। और अगला गीत भी इसी फिल्म से आप सभी के लिए, और इस गीत को आप सुनेंगे ए हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू, अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को लिखा है आर किरण ने और संगीत बद किया है राम लक्ष्मण ने।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:16 और आपने ट्यून कर रखा है दिल से दिल तक वाला चैनल यानी कि 107 एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। और फिलहाल आप सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम चाय लोग अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और आज प्यार भरे नगमे में हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली वाले फिल्मों से रिलेटेड और उन्हीं फिल्मों से गाने भी मैं आपको सुनवा रही हूं। तो इसी सिलसिले में बात करना चाहूंगी मैं उस फिल्म के बारे में जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1994, हम आपके हैं कौन। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म जॉइंट फैमिली के रिश्तों शादी ब्याह और उत्सवों का जश्न है। कहानी की बात करूं तो फिल्म दो परिवारों के रिश्ते और चाचा भतीजे आदर्श प्रेम और पर जो है आधारित है। और इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, जब परिवार पर एक दुखद आफत आती है बड़ी बहू की मौत तो परिवार के हित के लिए हीरो और हीरोइन यानी सलमान खान और माधुरी दीक्षित अपने प्यार का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं अंततः ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि लोग समझ जाते हैं, दोनों परिवार के लोग समझ जाते हैं और फिर जो माधुरी है उनकी शादी होती है सलमान से। और आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में हम आपके हैं कौन, लेकिन ये फिल्म जो है ये रीमेक थी फिल्म नदिया के पार की जो फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1982 में। तो दोनों फिल्मों से एक एक गाना जरूर आपके लिए प्ले करूंगी बैक टू बैक। पहला गाना पहला प्यार है, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, देव कोहली ने कलमबद्ध किया है और राम लक्ष्मण ने संगीतबद्ध किया है। और दूसरा गाना नदिया के पार से हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में आप सुनेंगे।

ऐसा है ना कि सामने दुर्गा पूजा है और कोई भी पूजा हो, त्योहार हो, उसकी खुशियां दोगुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाती है जब पूरे परिवार के, मतलब जितने भी फैमिली के लोग हैं, एकत्रित होते हैं ना, तो फिर क्या कहने, वो खुशियां, वो खुशबू, वो रंग, वो मिजाज, मानो कि दुर्गा पूजा में ना इतना वो चारों तरफ से हमारे जो है वो पॉजिटिविटी भर जाती है, लाफ्टर से पूरा घर गूंजने लगता है, एक से एक पकवान बनाते हैं हम, और ऐसा लगता है कि काश पूरी उम्र यूं ही निकल जाए। तो चलिए, जॉइंट फैमिली में जो लोग हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो क्या हुआ, जो न्यूक्लियर फैमिली में है वो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो है वो क्या रिलेटिव से कम होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए, कभी खुशी कभी गम के बारे में आपको बताती हूँ। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2001 में, करण जौहर की ये फिल्म बड़े पैमाने पर पारिवारिक

परंपराओं और शान और शौकत को दिखाती है। और कहानी की बात करूं संक्षेप में तो यशवर्धन रायचंद याद है ना, अमिताभ बच्चन ने यशवर्धन रायचंद का किरदार निभाया था। एक बेहद अमीर और अनुशासित परिवार के मुखिया हैं, और ऐसा भला कहाँ होगा कि मतलब परिवार हो, जॉइंट फैमिली हो और उसमें कुछ स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फिल्म का मेन थीम है कि जब परिवार का बड़ा बेटा शाहरुख खान एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करता है तो परिवार के उसूलों के वजह से उस घर से निकाल दिया जाता है। ये फिल्म दिखाती है कि परिवार के अलग होने से सब पर क्या बीती है और कैसे छोटा भाई ऋतिक रोशन उन्हें फिर से जोड़ता है। तो इसी फिल्म से बैक टू बैक दो गाने, पहला गाना यू आर माय सोनियो और अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में सुनेंगे, और दूसरा गाना जो है बोले चूड़िया।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में इस गीत को आपने सुना, यू आर माय सोनिया, और गीतकार समीर, संगीतकार संदेश आंडलिया, फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम, और अगला गाना भी इसी फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज में आप इस गीत को सुनेंगे, गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित।

इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई, अमिताभ बच्चन और आदेश श्रीवास्तव की आवाजों में, और फिल्म का नाम बागवान, गीतकार समीर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। फिल्म बागवान रिलीज हुई थी इन द ईयर 2003। ये फिल्म जॉइंट फैमिली सिस्टम के एक कड़वे सच और मॉडर्न तनाव पर चोट करती है। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी हेमा मालिनी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जब पिता रिटायर होते हैं तो उनके सभी बेटे उन्हें एक साथ रखने की बजाय आपस में बांट लेते हैं। माँ एक के पास, बाप दूसरे के पास। ये फिल्म आज के दौर में जॉइंट फैमिली के बिखरने और बुढ़ापे में माता पिता पर आने वाले इमोशनल स्ट्रेस को बहुत शिद्दत से दिखाती है। अगला गीत अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म बागवान से गीतकार समीर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। ऐसा है दोस्तों कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, और जिस माता पिता ने हमें धरती पे लाया, इतना प्यार दिया, ज़रूरत है तो बस उन्हें थोड़ा प्यार देने की, उन्हें समझने की, और जब भी कोई फेस्टिवल ओकेशन हो तो उन्हें उन खुशियों में शामिल करने की।

ऐसा है दोस्तों कि किसी भी धर्म में किसी को भी आप जितना पूजिए, जितनी प्रार्थना कीजिए, लेकिन अगर आपके कारण आपके माता पिता की आंखें नम होती हैं दुख से, तो वो पूजा कभी स्वीकार नहीं होगा। सामने दुर्गा पूजा है, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबके होठों पर हमारी वजह से मुस्कान आए, खुशियाँ आए, और हम सब मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर हर ओकेशन को मनाएं। जी हाँ, आज जो विषय है उसी से संबंधित एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी। कपूर एंड सन्स फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016। अगर आपको मॉडर्न दौर की रियल फैमिली ड्रामा देखनी है तो ये एक शानदार फिल्म है। कहानी संक्षेप में कहूं तो एक दादाजी की आखिरी ख्वाहिश होती है कि उनका पूरा परिवार एक साथ एक फैमिली फोटो खिंचवाए। ये फिल्म जॉइंट फैमिली के उस स्ट्रेस को दिखाता है जहां हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई राज, सीक्रेट, आपसी जलन या फाइनेंशियल तनाव छुपा होता है। ये परिवारों के परफेक्शन को नहीं बल्कि उनकी कमियों और आपसी तकरार को असल तरीके से पेश करती है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम रेनबो फैमिली वाले दिल से दिल तक वाले हैं और हम अपने परिवारों को जहां तक हो सकेगा जोड़ कर रखेंगे। इसी के साथ सुलक्षणा कहेगी कि अगला गीत आप सभी के लिए अरमान मलिक, अमाल मलिक की आवाज में, फिल्म कपूर एंड सन से। और इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिए अपनी आर्च फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल खिलाते रहे।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: वक्त हो चला है 8:03 आप सुन रहे हैं 107 MHz पर FM रेनबो अपने दोस्त प्रीति के साथ। और जी हाँ, आज तो शहर का मिजाज कुछ अलग ही है ना। एक तरफ दुर्गा पूजा की जबरदस्त भाग दौड़, हर जगह भी शॉपिंग बैग्स थामे लोगों का सैलाब, कतार में बंदी गाड़ियाँ, और दूसरी तरफ बन रहे हैं भव्य पंडाल, और साथ में आसमान से गिरती ये रिमझिम बारिश। कभी छाते खोल रहे हैं तो कहीं शॉपिंग बैग्स को भीगने से बचाने की होड़ मची हुई है, तो कहीं चाय पीने की तलब लग रही है, यानी मन कर रहा है। तो जाम, भीड़ और बारिश, शहर में थोड़ी हड़बड़ी तो जरूर है, लेकिन यही तो है हमारे कोलकाता की खास पूजा वाली वाइब्स। अगर आप इस वक्त कार के वाइपर की आवाज़ सुन रहे हैं और बस की खिड़की से भीगती हुई सड़कें देख रहे हैं, या शॉपिंग से लौटते हुए ट्रैफिक में फंसे हुए, तो अपनी सारी थकान और चिंता को यहीं विराम दे दीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति, लेकर आई हूँ आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम छायालोक। और इस कार्यक्रम में जी हाँ बिल्कुल आप अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 2213-1341, इस नंबर पर आप डायल करिए और अपनी फरमाइश हम तक ज़रूर पहुंचाइए।

वक्त तो चला है 8:13 और हमारे पास एक फरमाइश आई थी। फरमाइश करने वाली थी सुप्रिया और उन्होंने सुना चाहा है सिंदूर फिल्म से इस गीत को। तो आइए उनकी फरमाइश पर आपको सुनाते हैं ये गीत।

गहरा रही है। बाहर बारिश की बूंदें रास्तों पर चमक रही हैं और दिल के किसी कोने में वो एक खास नाम धीरे से दस्तक दे रहा है। वो इंसान जिसके लिए दिल हर मुश्किल, हर दूरी और हर इम्तिहान को हंसकर पार कर जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिसके बिना हर खुशी अधूरी लगती है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस एहसास को इस गीत के साथ महसूस करिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ ने।

एक जरूरी सूचना, तकनीकी खराबी के कारण आप 8:11 से 8:14 तक ट्रांसमीटर में कार्यक्रम नहीं सुन पाए, इसके लिए हमें खेद है। सूचना समाप्त हुई।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वक्त तो चले 8:33 और 4 सेकेंड और हमसे जुड़े थे श्याम कुमार चंचल और उन्होंने सुनना चाह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सरगम से इस गीत को। तो आइए उनकी फरमाइश पर सुनाते हैं आपको ये गीत और आप भी अपनी फरमाइश लेकर हम तक पहुंच सकते हैं, बस आपको खुद नहीं चलकर आना है। बिल्कुल जी हाँ, बस फोन आपको उठाना है और फोन पे नंबर डायल करना है, हमारा नंबर है 2213-1341।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। वक्त हो चला है 8:40, नहीं 41 मिनट हो चुके हैं। और वैसे भी आजकल किस चमक दमक भरी दुनिया में जहाँ हर कोई खुद को दूसरे के हिसाब से सजाने संवारने में लगा है, किसी ऐसे का मिलना उस बीच में जो आपकी अपनी पसंद और अपनी सादगी के साथ रहे, ये किसी नेमत से कम नहीं होता है ना। सच्ची खूबसूरती को किसी आईने या बनावट की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई आपको आपकी हर मासूमियत हर खामी के साथ अपना ले तो वो सादगी ही दुनिया की सबसे हसीन चीज़ बन जाती है। रात के इस ठहराव में दिल को छू लेने वाली वही मासूमियत और वही बेइंतहा तारीफ आप सुनेंगे फिल्म मोहरा से पंकज उदास और साधना सरगम की मखमली आवाज में। तो और इस गीत की फरमाइश लेकर आए थे शांतनु घोष हावड़ा बावरिया से। तो चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: वक्त तो चला है 8:47 और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते, बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: बिलघोरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: शुभजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ पे बहुत भारी भरकम हवा बारिश हो रही है
1: आज सुबह से, तो लगा नहीं कि ऐसा बारिश दिखने को मिलेगा।
0: ओके।
1: और सुबह इतना धूप था कि शाम के टाइम में ऑफिस से निकला तो एकदम नजारा ऐसा देखा कि इतना डर के मारे मैं कहीं रुक गया, क्योंकि इतनी तेज
0: बारिश
1: करक रही थी।
0: ओके।
1: उसके साथ साथ बारिश।
0: ओके।
1: मतलब काफी दिन के बाद में इतना मतलब
0: जोर से बारिश हुई, बिजली कड़क कड़क के, है ना?
1: बहुत।
0: तो फिर
1: मुझे लगा कि एक गाना बहुत सूट करेगा आज के दिन के लिए, वो है मंजिल फिल्म से रिमझिम गिरे सावन।
0: चलिए ये गीत तो हम सुनाएंगे जरूर, पर एक बात बताइए, बारिश हो रही है, पूजा का माहौल है, आपकी सारी शॉपिंग वगैरह खत्म हो गई?
1: शॉपिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि अगर पूजा के दौरान बारिश हो गया तो क्या होगा?
0: क्या होगा अब आप बताइए, आप ही बताइए कि आप लोग पूजा फिर कैसे इंजॉय करोगे?
1: एक्चुअली क्या मैम, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पूजा के दौरान थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है।
0: हाँ जी,
1: अगर सप्तमी हो गया, अष्टमी हो गया, तो नवमी में फिर धूप हो गया।
0: तो कहते हैं ना कि मन में चाहो तो हम लोग क्या होता है कि मन में चाहो तो कुछ भी किया जा सकता है। हाथ में छाता लीजिए, रेनकोट पहनिए और चल पड़िए, है ना, और अपनी मंजिल की ओर।
1: अलग ही जोश रहता है।
0: एकदम एकदम बिल्कुल। और बंगाल की पूजा तो पूरे वर्ल्ड फेमस है, है ना?
1: और आप जब देखेंगे कि जैसे कि लोग बारिश में भी छाता पकड़ के वो लाइन में खड़े हैं,
0: क्या सही में एकदम तब समझ में आता है कि भाई क्या जोश है, है ना? बिल्कुल।
1: और एक चीज सोचिए कि बहुत लोग पैंडल हॉपिंग नहीं कर पाते, स्पेशली जो लोग उम्र हो गए हैं। लेकिन
0: नहीं ऐसी बात नहीं है, उम्र हो गए इसलिए पैंडल हॉपिंग नहीं कर पाते, कुछ लोग भीड़ से भी बचना चाहते हैं, है ना? किसी को बहुत सुकून और शांति से पूजा देखने का भी बहुत, और आजकल तो बहुत सोशल मीडिया है तो आराम से टीवी पे बैठ के भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया में रील्स चल रही है, कितने सारे फेयर चल रहे हैं, तो उसमें भी लोग आराम से एंजॉय कर लेते हैं।
1: हम लोग को रिपोर्ट देते हैं आकाशवाणी से भी होता है कि
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर या सुनना चाहिए इस समय आकाशवाणी को पूरी तरह से।
1: और एक चीज, जो लोग नहीं जा पाते कुछ भी कारण से, आप अपने पारा में सोसाइटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जब कहीं पर भी पूजा होता है, आप वापस सुकून से बैठ जाओ और माँ की आरती देख लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग ही शांति मिलती है सही में। तो चलिए आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 2213-1341, आप हमसे जुड़ते हैं। तब तक चलिए इनकी फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज में हम आपको सुनाते हैं मंजिल फिल्म से इस गीत को, और इस गीत को संगीत से सजाया था RD बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे योगेश ने।

घड़ी कह रही है कि अब आपसे विदा ले ले, और क्योंकि ये मौसम है, ये शहर और ये समा, सच कहूँ जाने का मन नहीं कर रहा, पर जाना होगा क्योंकि रात गहरी हो चुकी है, और जाने की इजाज़त दीजिए। इसी के साथ प्रीति आप सभी से कहती है चाचा बाबा, फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो।